करूंगा। आनी ये जीवन पढ़ूंगा वह सोनातु एवा गा अभगरे ये एकुम बगनी रिसिकस्का नी ब्राह्मण बोले मुंबई के लिए तुम को पंचस्का निखाली आपो और बनियो अगर उपवा और यह कुल इंदिरा को उपवालो उपवा को भी सुप्रीमी मुंबू मुलाकात कर बना आवाज़ ये रोंगा उठी के लिए वसाने येरा मुझसे वो करता नहीं मैं जो कुछ कुलियो निकाली लियो ने आप वो एक वा उनका उपवा चलेगी आते या ये अपने इंदिरा में जेहा लिखा उपवा ने सुप्रीम का उनसे वो बेचारा मारिया जगह Amen.